कबीर साहब साध संगत जी हो, दुनिया विच बड़े बड़े खुशी दे मौके हैं और तरह तरह नाल दुनिया अपने मन की खुशी जाहिर करती है। इस दुनिया विच जेड़े भगत लोग हैं, जेड़े रब दे बन जाते हैं, जेड़े परमात्मा दे चरण अपने मन विच वसा लैंदे हन, जिन्हां नूं अपना सच्चा पति रब लगन लग पैंदा है, एका पिर सखियां सब पिर की, खसम ते ओ आप है असी ते सब दासियां हां। कबीर साहब कह रहे हन, मैं किहो जिहा दूल्हा मैनू पाया, मैनू रब वर्गा दूल्हा मिलिया है। राम राय सो दूलो पायो अस वड भाग हमारा। बराती मेरे नाल कौन हन, मेरे पंजो तत्। रब ने मेरे ते कृपा कीती है, मेरे मन रूपी सेजा ते आके चरण पाए हन, मेरे ग्रह आए राजा राम पथारा। सुर नर मुन जन कौतक आए, कोट तेतीस तेती करोड़ देवता इस गल दा साक्षी है। की साक्षी है, कह कबीर मोए ब्याहे चले हैं। पुरख एक भगवान, पुरख एक है, पुरख ओ वाहिगुरु आप है, असी ते सब उसदियां दासियां हां। तू ठाकरो बैरागरो मैं जे ही कण चेरी, मेरे वर्गियां लखां दासियां करोड़ां दासियां तेरे दरवाजे ते चाड़ू पईयां दिंदियां हन। मैं जे ही घन चेरी राम तू सागरो रत नागरो, हौ सार ना जाना तेरी राम, सार ना जाना तू वडदाना कर महरमत साईं, कृपा कीजे सा मत दीजे आठ पहर तुद त्याई। ऐसी मैनू मत दवो, ऐसी मेरे ते कृपा करो कि मैं आप जिनू अठो पहर हर घड़ी तुहानू जपा वाहिगुरु। ते जिन्ना रे वाहिगुरु नू जपया उन्हां दी जिंदगी दा नाम ही सुख बन जांदा, ते जेड़े रब तो बिना हन ओ दुखी हन, ते जेड़े रब वाले हन जेड़ियां खसम वालियां हन ओ सुखी हन। ते गुरु कृपा करे ए सुहाग तुहाडे जपण वालियां दा बनिया रवे। कह कबीर मोए ब्याहे चले हैं।

अच्छा फरमान जी, आम करके दुनिया कन रस विच उलझी है, ये आत्म रस दी खुराक है, आत्म रस जै जाने ही सो है खालस दी।

आओ भाई बंदी छोड़ नू अरदास कीती सी ना पातशाह सी कैद होए पए मेर कर सानू इस कैद तो बंद खलासी कर अपना पल्ला पकड़ा गुरु पंचम पातशाह अरदास कर दें पंच दूत मूंड पर ठान।

इतनियां गलतियां कीतियां पिछले जन्मां विच कि मुड़ के ओही गलतियां इस जन्म विच कर रहे। ऐ जरा रेडियो बंद कर दियो, विच चल रहा है, टेप नूं चलाण तों पहला वेख लिया करो। एक बारी प्यार नाल बोलिए सतनाम श्री वाहिगुरु। पातशाह आखदे पहला गलतियां कीतियां हुण मुड़ के गलतियां कर रहे, ते दाता जे तू बख्शना ते बख्श लै, नहीं तां साडे लई तां अगे जुतियां तैयार। पातशाह गुरु नानक देव जी आखदे

एक कर्म छड़ के तू करोड़ा कर्म कर। भुख्यानु रोटी खुआ, जल छका, सेवा कर। पातशाह कहने ने तू एक कर्म छड़ के कई कर्म करेगा, जे नाम हिरदे विच नहीं वसया नरकां दा बुआ जरूर वेखना पवेगा।

प्यार पिता देवेगा, पड़ोसी नहीं दे सकता। जो स्वाद अंब विचों आवेगा, अंबली विचों नहीं।